के गरी कना हे राम हे राम हे रामाई। पांच पांडव भाई के भे भने देखी उतापटी परमात्मा 36 वर्ष पछाड़ी राज्य उनीले 36 वर्ष पछाड़ी यादवहरू जो दीपराकाश पाले सारा छिए भए प्रभास तिरामा देखे जसै कृष्णले दिक्माने मनमा कुल छिए भयो जानु पर्यो लौ भनी सूर्यहरण होई भविष्य पनि भयो दाजै बलराम पनि नारायण।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो स्थैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: अनुरोधक दीप जनवन कार्यालय दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

कपना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजा भौतिक जगत में नहर द नारी ले प्रगति पथ को।

मेरो नाम सूर्यबहादुर थापा, भिनपा तीन तारसलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल दश जोदायको फलचारी बुद्धि हिन दोन जानकी सुनिर पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिश तुम लोग उजागर, राम दूत अदुल तपलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुतनाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार्य स्मृति की संगी, कंचन वर्ण विरास वेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बर्ज और ध्वज विराजई, कांधे मुझे जने साजई, शंकर सुबन केसर नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, पर्व चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूपधरी से दिखवाया, विकट रूप बदल लंगर आया, हेम रूपधरी असुर संहारी, रामचंद्र के काज संवारी, लाए सजीवन लखन जी आये, श्री रघुवीर हरचूर लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहज बदन तुम्हारे जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा, नारद सारद सहित ऐसा, हेम कुबेर दीपाल जहाते, कवि गोविंद कैसे के कहते, तुम उपकार सुग्रीव कि ना, राम मिलाए राजपद दिना, तुम्हारो मंत्र भी विषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताई मद फल जानु, प्रभु मंद्रिका मेली मुखमाई, जल्दी लागी गए अतर्जन आई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम द्वारे तुम रखवारे, वतन आज्ञा बिना पैसारे, सब सुखलाई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षे काम को डरना, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाकते कापे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कमर वचन ध्यान जलावे, सब पर राम तब श्री राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, अवरो मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारो जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगदेव जियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नमनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता, राम रसायन तुम्हारी पासा, सदा रघुपति के दासा, तुम्हारी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त खाई, और देवता चिदन धरई, हनुमत से ही सर्व सु करई, संकट कटई मिर सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा, जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छुटी बंदी माँ सुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सनाहरि चेरा, किजनाथ हृदय मोहडेरा। ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसुंधरा शिवा पर रामचंद्र शंकर जी बाजा। जय हनुमान, जय बजरंगबली।